अब परीन से यख मौसम दे यार दीदी स्टूडियो के वाह वाह वाह वाह वाह वाह जमा फेड़ो वाली चीज दो दरी घंटे जिकम ने नोर प्रोग्राम कम मौसम यख देखा ना आजकल मौसम यख ही नो इंसान जिकम दे नो हरि ओकार दजड़ न कही आवाज दस दे जे बस फ्रिक दे जे यो घंटे जिकम ने ठीक दे सब जिकम ने नो अपल मास्क खराब हो अब सरा दो दरी घंटे

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: द एलोपैथिक और द होम्योपैथिक द द्वाणु इलाजुन ना उम्मीद शुरू बीमारानो दोपारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासु पखार सवाबई की प्राणी सुविधा कटासु के हम सुख पली बीमारी द क्लासिक होम्योपैथिक इलाज सरा द मुंडा खत्मोल वाड़ी नुजर तरजरा द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल द सवाबई ब्रांच इंतखाब होके पता याद साथी जहांगीरी रोड बाने द शामनसुर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसुर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313-9494-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की होम
3: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।

सवाबी और इसके मुजाफात में आजान का वक्त हुआ जाता है। बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें।

मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की होम।

0: Fact. Right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं, दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: खुश खबरी हगठोल बीमारान चरचा हड़ुकी माछी याद माते दो नपस गलत पेवन शिवी चिदचा दखपो औदला सुनो गुतो रगुन बन शिवी औया गुते बेहरकत शिवी औद चाचे दखपो द कुंडो दनन लाड़ खत्म शिवी कोपे दर्दुना औ टकार कवि हगटोली जनाना चिदचा खपे औला सुना सुनकीगी औ हगटोल मरीजान कमचे दमला दमहरो याद पटो मरीजान हुई याद माशुमानो खपी कगी हुई नु दहा गटोल मरीजानो द पारा द खुशालई खबर उस बाद हर इतवार पर रोजबांदी सहर द अतो बजो नवाखली माजीगर तरसलो रो बजो पूरे द इस्लामाबाद औ द पेखवर नुमवड़े डॉक्टर ऑर्थोपेडिक एंड ट्रामा सर्जन डॉक्टर तारिक रहीम सेब MBBS MCPS FCPS एक्स रजिस्ट्रार HMC पिशावर सहर द अतो बजो नवाखला माजीगर तरसलो रो बजो पूरी तासो तशरीफ रवड़े शे नुपा तैयार साथे बिलाल प्लाजा अल सेद CNG ता महामख कुंडा मोड़ जहांगीरा रोड सवाबी मजीद द मालूमातो द पारा या द नंबर अगस्तो द पारा पदे नंबर राबितो के 0314-15-13-232 यानी के 0314-15-13-232
3: माँ वेले माल द शारजा ने काली रावड़ा
4: जो उस्ता कालू द पारा शारजी ता सिंगलार शमा
3: ओहो पमीना बाजार टोपई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टूल वैरायटी मौजूद दा
4: नुदा सिवाया का ना
3: शारजा ज्वेलर्स Proprietor Zeb Brothers, phone 0938-273265.
5: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par. Log on to www.radiodilbar.pk.
6: This radio station plays only music. Today's best music.

0: Welcome 94. Broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk
2: I can find new ways to motivate them
3: and all that
4: real talk real life real people real radio
5: The station that just doesn't stop.
6: 94 FM.
7: सर्दी हो या गर्मी, रेडियो दिलबर आपके संग संग.
8: दादी रेडियो दिलबर. स्तासु दजरावास.
9: Radio Dilbar. Radio.